0: 6.9 inch को standard display, AI powered camera, 3 years को warranty सहित, Redmi A7 में 5200 mAh तथा, Redmi A7 Pro में 6000 mAh powerful battery को साथ, थप अत्याधुनिक विशेषता हर ले, तपाईं को मन जित बारंबार.
1: Radio Veri FM, Radio Veri FM,
2: Radio Veri FM, अंचना बेतु पुछा, वैक्सी 2.7 MHz.
3: Extreme energy drink.
4: Time check. Aile thik 1 baje ko cha.
5: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी